श्री राम लला भगवान की, श्री आनंद कंद भगवान की, श्री कौशल्यानंदन भगवान की, श्री दशरथ नंदन भगवान की, श्री कैकेयी नंदन भगवान की, श्री सुमित्रा नंदन भगवान की, श्री चारू भैयन की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी की, जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सर्वसंत वैष्णव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गो माता की, भारत माता की, प्रातः श्रृंगार आरती की, जय जय श्री सीताराम।

विप्रधेनु सुर संतहिता लीन हमनुजे अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र के जय श्री अयोध्या राम जी लला के जय श्री पवन।

चरणकमले सुमन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमस्करोमि। अर्जनम् भवबीजानाम् अर्जनम् सुखसम्पदाम् तर्जनम् यमदूतानाम् राम रामेति गर्जनम् श्रीसीताराम् नाम महाराज की। संत बड़े परमार्थी वेस्तरे अवधूत राम नाम की गर्जना भाग्याय मधूत श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री राम लला भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय, श्री राम जय, जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

जी श्रोताओं, अब से लेकर ठीक 12:30 तक मैं आपकी रेडियो दोस्त सबरीना महराज आपके साथ जुड़ी रहूंगी। श्रोताओं, आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 समाप्त कर रहे हैं। एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और डीटीएच की आराधना सर्विस न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। श्रोताओं, श्रद्धा आस्था और अध्यात्म से भरी श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा 2026 अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण की ओर बढ़ रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छड़ी मुबारक यानी भगवान शिवा की पवित्र छड़ी अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक पहुंचकर यात्रा के समापन को दिव्य रूप प्रदान करेगी। श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा 2026 में 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चल रही है। 28 अगस्त को रक्षा बंधन के पवित्र अवसर पर यात्रा का समापन होगा। छड़ी मुबारक केवल एक पवित्र छड़ी नहीं बल्कि बाबा अमरनाथ जी की पारंपरिक पूजा और आस्था का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा में पवित्र छड़ी को भगवान शिवा का स्वरूप मानकर पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ अमरनाथ गुफा तक ले जाया जाता है। इस पवित्र यात्रा में साधु संत, महंत और शिव भक्त बड़े उत्साह के साथ शामिल होते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए।

श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए बताएंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सोमवार के दिन पवित्र श्री भोडा अमरनाथ जी यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। एक्स पर एक पोस्ट के जरिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस तीर्थ यात्रा को श्रद्धालुओं के लिए एक बदलाव लाने वाला अनुभव बताया और सभी यात्रियों के लिए सुखद, सुरक्षित और आध्यात्मिक रूप से संतोषजनक यात्रा की प्रार्थना की। उन्होंने लिखा, आज पवित्र श्री बुढ़ा अमरनाथ जी यात्रा को फ्लैग ऑफ करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये दिव्या तीर्थ यात्रा श्रद्धालुओं के लिए एक बदलाव लाने वाला अनुभव है। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि देश की हर कोने से आने वाले सभी यात्रियों की यात्रा सुखद, सुरक्षित और आध्यात्मिक रूप से संतोषजनक हो। महादेव आपकी पवित्र यात्रा के हर कदम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों श्रद्धालुओं के इस वर्ष की श्री बुड्ढा अमरनाथ जी यात्रा में शामिल होने की उम्मीद है और महादेव आपकी पवित्र यात्रा के हर कदम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आप मेरे साथ बने रहिए और यह आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 समाप्त कर रहे हैं। एफ एम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफ एम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और डीटीएच की आराधना सर्विस न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। आप हमारे साथ बने रहिए।

श्रोताओं, आज 18 अगस्त 2024 हैं और 18 अगस्त 2024 की धार्मिक अहमियत के हवाले से मैं आपको बताऊंगी। कल की जयंती धर्मा की पुण्य स्थापना का संदेश। सनातन परंपरा में कल की भगवान को भगवान विष्णु का दशम अवतार माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों की परंपरा के अनुसार कल्कि अवतार का संबंध उस समय से है जब अधर्म बहुत बढ़ जाएगा और धर्मा की पुण्य स्थापना की आवश्यकता होगी। इसलिए कल्कि जयंती का सबसे बड़ा संदेश ये है, अधर्म कितना भी बढ़ जाए, अंत धर्म और सत्या की विजय होती है। श्रद्धा, ये दिन इंसान को अपने अंदर के क्रोध, लोभ, अहंकार, अन्याय और बुराई को कम करने और सत्या, धर्म और अच्छे कर्म को अपनाने की प्रेरणा देता है। आप हमारे साथ बने रहिए और 18 अगस्त 2024 के हवाले से, सनातन की अहमियत के हवाले से मैं आपको आगे भी जानकारी दूंगी। तब तक हमारे साथ बने रहिए।

श्रोताओं, ठीक 8 बज रहे हैं सुबह के। विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 आप समाप्त कर रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz पर। श्रोताओं, अब आप हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो, जहां से आप समाचार सुनेंगे।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा और निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को हराया। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
1: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
0: और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्रनाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। देवेंद्रनाथ महतो ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के फैसले के बाद जेएससी सीजीएल के जरिए पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों ने भी विरोध जताया और रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटकर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने यह सवाल उठाया था कि बिना अनिवार्य वैध फोटो पहचान पत्र के अमरीका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। श्री ट्रंप ने इस टिप्पणी का हवाला देते हुए अमरीकी कांग्रेस से सेव गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी यानी सेव अमेरिका अधिनियम पारित करने को कहा। यह प्रस्तावित विधेयक संघीय चुनाव में मतदान के लिए और अधिक सख्त नियम लागू करने की मांग करता है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि यह बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग को और मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। यह कार्यक्रम भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के मुख्य थीम सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। यह बैठक सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगी। अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के तहत केंद्रित गतिविधियों के लिए चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण,

0: जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा के प्रति दृढ़ताशील सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव तथा नेपाल सेना और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। जनरल धीरज सेठ ने जनरल सिग्देल के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भारतीय दूतावास में राजदूत नवीन श्रीवास्तव से भी भेंट की और दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल सेना को भारत की ओर से सैन्य और चिकित्सा उपकरण भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य, कराईकल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरलम और माहे में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की तेज वर्षा जारी है। राज्य में कल अधिकांश स्थानों पर बहुत तेज बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश के कारण कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है।
2: बीते 24 घंटों के दौरान मंडी जिले के कटौला में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि लगभग 994 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज राज्य के 4 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आंध्र प्रदेश के डॉक्टर B.R. अंबेडकर कोनासीमा जिले से मछुआरों को ले जा रही मछली पकड़ने की एक नौका समुद्र में लापता हो गई है। ये मछुआरे इस महीने की 3 तारीख को मछली पकड़ने के लिए निकले थे और उन्हें 10 दिन के भीतर वापस लौटना था। उनके वापस न लौटने पर परिवार वालों ने अधिकारियों को सूचना दी। तटीय पुलिस और मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने लापता मछुआरों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। केरलम में विझिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री V.D. सतीशन आज इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। एक रिपोर्ट।
3: विझिंझम समुद्री बंदरगाह अब तक मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्र के तौर पर काम कर रहा था, जहां मदरशिप कहे जाने वाले बड़े जहाजों से आने वाले कंटेनर को आगे ले जाने के लिए छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता था। इस बंदरगाह को 17 जुलाई को निर्यात और आयात के लिए मंजूरी मिली थी। शुरुआत में विझिंझम बंदरगाह से सिर्फ फुल कंटेनर लोड कार्गो का आयात निर्यात होगा। इस बंदरगाह का पिछले वर्ष 2 मई को उद्घाटन किया गया था। तिरुवनंतपुरम से स्मिति M. पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन

0: पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे और आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और अब खबरें नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की।
1: नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पहले राउंड में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ शुरुआत की। खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पुरुषों के एकल श्रेणी में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी चीन के शी यूकी को 21-14, 13-21 और 21-19 से शिकस्त दी। वहीं महिलाओं की एकल श्रेणी में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7 और 21-11 से आसानी से हरा दिया। साथ ही महिलाओं की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी टेसा जोली और गायत्री गोपीचंदन ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेस को 21-9 और 21-13 से हरा दिया। इससे पहले पुरुषों की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने दूसरे राउंड में जगह बनाई। दूसरे गेम में यह जोड़ी 6-4 से आगे चल रही थी, तभी आयरलैंड के उनके प्रतिद्वंदी स्कॉट गिल्टिया और पॉल रेनॉल्ड्स को चोट के कारण खेल से बाहर होना पड़ा। अर्जुन और अमसा करुण ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया था। विष्णु और भानु की रिपोर्ट के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा और झारखंड में छात्र आंदोलन के असर के समाचार छाए हुए हैं। पंजाब केसरी के मुख्य पृष्ठ पर पहला समाचार है, अब नितिन की नवीन टीम। पत्र ने उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव, महासचिव स्मृति ईरानी और कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल के चित्र भी सबसे ऊपर प्रकाशित किए हैं। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, भाजपा की नवीन टीम, 12 महिलाएं, 7 अल्पसंख्यक और 6 नए महासचिव। जनसत्ता में इस समाचार की सुर्खी है, माधव और ईरानी की वापसी, अमित मालवीय की हुई छुट्टी। हिंदुस्तान का शीर्ष समाचार है, टीम नवीन में जोश होश का मेल। नवभारत टाइम्स ने झारखंड के घटनाक्रम को पहला समाचार बनाया है, कई फजीहतों के बाद NTA ने बदली अपनी टीम, 600 एक्सपर्ट्स हटाए। पत्र ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के निर्देश और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वक्तव्य को बॉक्स प्रकाशित करते हुए आंदोलनरत छात्रों की तस्वीर भी प्रमुखता से प्रकाशित की है। दैनिक ट्रिब्यून ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चित्र सहित इस खबर को शीर्षक दिया है, झारखंड आउटसोर्स एजेंसी की 2014 से अब तक कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द। राजस्थान पत्रिका ने रेल यात्रियों की सुविधाओं की उपेक्षा और अनदेखी को संपादकीय का विशेष बनाया है। पत्र कहता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है, जिसमें कहा गया है कि देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिले हैं। सवाल सिर्फ पानी के पीने का साफ होने का नहीं है, यात्रियों की दूसरी सुविधाओं की भी समयबद्ध जांच और सतत निगरानी करनी चाहिए, चूंकि यात्री सुविधाओं कोई भी अनदेखी चिंताजनक है। लोकसत्य ने नाग पंचमी के अवसर पर महाकाल मंदिर उज्जैन में उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़ का समाचार अपने पहले पृष्ठ पर रखते हुए बिहार के लखीसराय में मची भगदड़ में 7 दर्शनार्थियों की मौत का समाचार भी बॉक्स में प्रकाशित किया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में विद्यार्थियों के जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने JSSC, CGL परीक्षा और निजी एजेंसी TDPL द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यूकी को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। झारखंड गवर्नमेंट कैंसल्स JSSC CGL एग्जामिनेशन आफ्टर 24-day स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, ऑल्सो कैंसल्स ऑल अदर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कंडक्टेड बाई द प्राइवेट एजेंसी TDPL।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। झारखंड सरकार ने 24 दिन तक जारी रहने वाले तलबा एहतजाज के बाद जेएसएससी सीजीएल इम्तिहान को रद्द कर दिया है। झारखंड हुकूमत ने प्राइवेट एजेंसी टीडीपीएल के जरिए

0: मुनाकिद कराए गए दीगर तमाम भर्ती इम्तिहानात भी मनसूख कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निज़ाम की तारीफ की है और इसे अमरीका में मजीद सख्त इंतखाबी कवानीन के लिए एक मिसाली नमूना करार दिया है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स वुज़राए माहौलियात के 12वें इजलास की मेज़बानी करेगा। भारतीय फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ को नेपाल के सदर रामचंद पौडेल ने काठमांडू में नेपाली फौज के एजाजी जनरल का ओहदा अता किया। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज झारखंड में इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड में आयुष शेट्टी ने आलमी नंबर एक और दिफाई चैंपियन शी यू की को शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। झारखंड हुकूमत ने रियासत में तलबा के 24 दिन तक जारी रहने वाले एहतजाज के बाद JSSC CGL इम्तिहान को मनसूख कर दिया है। हुकूमत ने प्राइवेट एजेंसी TDPL के जरिए मुनाकिद कराए गए दीगर तमाम भर्ती इम्तिहान भी रद्द कर दिए हैं। इस ऐलान के बाद रांची में एहतजाज के मकाम पर तलबा ने जश्न मनाया। ताहम CBI जांच का मुतालिबा अभी पूरा नहीं किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: झारखंड हुकूमत ने JSSC CGL इम्तिहान और TDPL एजेंसी के जरिए मुनाकिद किए गए तमाम मुसाबकती इम्तिहान मनसूख करने का फैसला किया है। इसके अलावा हुकूमत ने 2014 से अब तक मुनाकिद किए गए JPSC और JSSC के भर्ती इम्तिहान की तहकीकात का भी ऐलान किया है। यह फैसला वज़ीर आला हेमंत सोरेन की सदारत में मुनाकिदा काबीना की खसूसी मीटिंग में लिया गया। एहतजाज करने वाले तलबा ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इस फैसले का खैर मकदम किया और मिठाइयां तकसीम करके और एक दूसरे को गुलाल लगाकर जश्न मनाया। हुकूमत ने 2014 के बाद से JPSC और JSSC के जरिए किए गए भर्ती के अमल की जांच करने और इम्तिहान के निज़ाम में इस्लाहात की सिफारिशात पेश करने के लिए IAS ऑफिसर अमिताभ कौशल की सरबराही में एक कमेटी तश्कील देने का भी फैसला किया है। इस दौरान रियासती वजीर दीपिका पांडे सिंह, वजीर सेहत इरफान अंसारी और रुकन असम्बली जयराम कुमार ने सदर अस्पताल का दौरा किया और देवेंद्र नाथ महतो समेत एहतजाज करने वाले दीगर तलबा की भूख हड़ताल जूस पिलाकर खत्म कराई। देवेंद्र नाथ महतो ने हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस फैसले से उनके अहम मुतालबात पूरे हो गए हैं। JPSC JSSC न्याय मंच ने भी ऐलान किया है कि वो फिलहाल अपना एहतजाज मुअत्तल कर रहा है। तलबा रहनुमा रविंद्र पासवान ने हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। ताहम उन्होंने कहा कि रिफॉर्म मंच मुबैना बेजाब्तियों की CBI जांच का हुक्म जारी होने तक अपना एहतजाज जारी रखेगा। हुकूमत के फैसले के बाद उन उम्मीदवारों में भी एहतजाज शुरू हो गया जिन्हें पहले ही JSSC CGL इम्तिहान के जरिए मुलाजमत के लिए मुंतखब किया जा चुका है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निज़ाम की तारीफ की है और इसे सख्त अमरीकी इंतखाबी जाब्तों के लिए मिसाल करार दिया है। जनाब ट्रंप ने भारत के इंतखाबी तरीक़ेकार को इंतखाबी जांच पड़ताल के लिए मिसाली नमूना करार दिया और अमरीका में वोटर शनाख्त से मुतालिक ज़रूरतों में सख्ती बरतने की वकालत की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब ट्रंप ने भारत के आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के साथ अपनी हालिया बातचीत का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जनाब कुमार ने सवाल पूछा था कि अमेरिका में मजाज तस्वीरी शनाख्ती दस्तावेज के बगैर इंतखाबात किस तरह मुनाकिद होते हैं। जनाब ट्रंप ने इस तबसे के जरिए अपने उस मुतालबे को दोहराया कि अमरीकी कांग्रेस को सेफ गार्ड अमरीकन वोटर एलिजिबिलिटी सेव अमरीका एक्ट को मंजूर करना चाहिए। इस मुजवदा कानून के जरिए वफाकी इंतखाबात में वोटिंग के लिए सख्त ज़रूरतें मुतारफ कराने की तजवीज़ है। इसके तहत राय दहिंदगान को वफाकी इंतखाबात के लिए रजिस्टर करते वक्त अमरीकी शहरियत का दस्तावेजी सबूत और हुकूमत की जानिब से जारी करदा तस्वीरी शनाख्ती कार्ड फराहम करना होगा। व्हाइट हाउस ने इस कानून को अमरीकी इंतखाबात में सिर्फ अमरीकी शहरियों की जानिब से राय दहिंदगी को यकीनी बनाने वाला कदम करार दिया। अमरीकी इंतजामिया ने कहा कि भारत और ब्राज़ील ने वोटर शनाख्ती कार्ड को बायोमेट्रिक डेटाबेस से मुंसलिक कर दिया है जबकि अमरीका शहरियत के लिए बड़े पैमाने पर खुद से तस्दीक पर इन्हिसार करता है। जनाब ट्रंप ने भारत के आम इंतखाबात के वसी दायरे का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के हाली आम इंतखाबात में तकरीबन 462 मिलियन अफराद ने अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया। दिल्ली से कुमोदी पारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के माहौलियात के वजीरों के 12वें इजलास की मेजबानी करेगा। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली की वजारत ने कहा कि ये इजलास अहम उमूर पर तफसीली

0: श्रोताओ, महंत दीपेंद्र गिरी जी की देखरेख में सोमवार को दशनामी अखाड़ा में धार्मिक आस्था और उत्साह के साथ पारंपरिक छड़ी पूजन किया गया। छड़ी पूजन एक पुरानी परंपरा है जो हर साल नाग पंचमी के दिन दशनामी अखाड़ा मंदिर में निभाई जाती है। इस विशेष पूजा में बड़ी संख्या में साधु, कश्मीरी पंडित, स्थानीय लोग, सरकारी अधिकारी और श्री अमरनाथ जी के यात्रियों ने हिस्सा लिया और भगवान शिव के पवित्र छड़ी मुबारक के दर्शन किए। इस मौके पर भक्तों ने भजन कीर्तन भी किया। इस हवाले से महंत दीपेंद्र गिरी जी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं।
1: आज श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी का दिन है। परंपरागत नाग पंचमी का दिन के नाम से भी ये प्रचलित है और परंपरागत आज के दिन ही यहाँ पर पूजन किया जाता है। ये मुख्य पूजन था। अगर आप यहाँ कश्मीर से हैं तो आपको जानकारी होगी कि यह पूजन करने के तुरंत बाद हम मुख्य यात्रा के लिए महात्मा शक्तिकाओं को लेकर, शिव और शक्ति स्वरूपनी शक्तिकाओं को लेकर मुख्य यात्रा के लिए और पवित्र गुफा के लिए पैदल ही प्रस्थान किया करते थे। मुझे स्मरण है आज के दिन यहाँ 20 से 25 हजार लोग इकट्ठे हुआ करते थे और यहाँ से लेकर दुर्गा नाग तक सड़क के दोनों तरफ दाएं और बाएं विभिन्न समुदायों के लोग यहाँ पर छड़ी के दर्शन और महात्माओं का जो प्रोसेशन था उसको देखने के लिए वो खड़े होते थे। और यहाँ से निकलने के बाद रात्रि को पहला पड़ाव पंपुर, दूसरा पड़ाव बिजबहाड़ा, तीसरा पड़ाव गौतम नाग होकर अनंतनाग में, उसके पश्चात मारतंड। कभी कभी तिथियों में भिन्नता होती थी तो दो रात्रि भी मारतंड में हम रुकते थे। उसके पश्चात अश्मकाम के बाद पहलगाम, दशमी और एकादशी की रात्रि हमेशा परंपरागत हम रुकते हैं पहलगाम में, जो कि इस वर्ष 22 और 23 अगस्त को है। 24 अगस्त को रात्रि पड़ाव होगा चंदनवाड़ी में, 25 अगस्त को रात्रि पड़ाव होगा शेषनाग में। इस बार तिथियों में भिन्नता है। सामान्यतः हम पंचतरणी में एक रात्रि पड़ाव करते हैं श्रावण पूर्णिमा से पूर्व चतुर्दशी के दिन, लेकिन इस बार थोड़ी तिथियों में भिन्नता है तो 26 और 27 दो रात्रि पड़ाव होगा पंचतरणी में, और अंततः 28 अगस्त जो कि मुख्य दर्शन का दिन है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि श्रावण पूर्णिमा के दिन इस पवित्र गुफा में बनने वाले हिमलिंग, जो कि भगवान शिव हिमलिंग के रूप में विद्यमान रहते हैं, उनके दर्शन करने का महात्म्य है। तो परंपरागत छड़ी मुबारक को हम लेकर उस पवित्र गुफा में जाएंगे जहां माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने वो कथा कही जिसको सुनने से व्यक्ति जीवन और मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्त हो जाता है। और वैदिक मंत्रों से परंपरागत पूजन अर्चन करने के पश्चात रात्रि पड़ाव पुनः हम श्रावण पूर्णिमा के दिन पंचतरणी में करेंगे। 28 की रात पंचतरणी में, 29 तारीख प्रातःकाल पंचतरणी से चलकर शेषनाग होते हुए चंदनवाड़ी होते हुए हम रात्रि पड़ाव करेंगे पहलगाँव में। 30 तारीख को प्रातःकाल पहलगाँव में लिद्दर नदी के किनारे पूजन विसर्जन और उसके पश्चात महात्माओं का भोज और उसके साथ ही छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की जो वार्षिक यात्रा है वो पूर्ण होगी।
2: सर, एक बात जानना चाहेंगे, खुशी की बात है कि लोग अब जुटते जा रहे हैं वापस एक तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ से जब धार्मिक तरीके से यात्रा शुरू होते हैं उससे पहले ही जो गुफा में तो ही लोगों को निराश भी होना पड़ता है, क्या कोई सुझाव दिया आपकी तरफ से?
1: हाँ, मैं अनेक वर्षों से बात कहता हूँ और इस बार भी हमने देखा कि जो प्रथम 10 या 12 दिन में थे, 3 जुलाई को ये यात्रा प्रारंभ हुई, तो संभवतः 10 दिन या 12 दिन के बाद संख्या ये 3 लाख तक पहुंच गई थी। 3 लाख तीर्थयात्री दर्शन कर चुके थे। तो उसके बाद इस वर्ष तो जो मौसम है उसने काफ़ी बाधाएं पैदा की, और मुझे स्मरण है कि मैं पहलगाँव में गया 29 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पूजन करने के लिए, तो वहाँ मुझे

0: गया कि 19 जुलाई के बाद पहलगाम वाला मार्ग उस वहाँ से यात्रा सस्पेंड कर दी गई थी, और अभी 4-5 दिन पहले जो मंडल आयुक्त हैं डिविजनल कमिश्नर कश्मीर उनकी तरफ से स्टेटमेंट हुआ कि 9 तारीख के बाद जो बालटाल वाला मार्ग है वो भी हम बंद कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कश्मीर में इस वर्ष जो है जुलाई और अगस्त में वर्षा अत्यधिक हुई, नॉर्मल से अधिक, और बीच बीच में तो यहाँ फ्लड की वार्निंग्स थी, मैजूर नगर इत्यादि, तो पानी थोड़ा सा आया भी, तो मार्ग ऐसा बताया जाता है कि मार्ग जो है वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ। तो मुझे लगता है तीर्थयात्री ये निश्चित है जो आप कह रहे हैं कि ये दुख अवश्य होता है कि हम जैसे ही अप्रैल मार्च में जैसे ही रजिस्ट्रेशन की बात शुरू होती है जो तो शिव भक्त हैं उनके मन में यात्रा के लिए जो हृदय में सुपूर्णा वो प्रारंभ हो जाती है और उसके अनुरूप वो रजिस्ट्रेशन और दूसरी तैयारियां अपनी छुट्टी रिजर्वेशन इत्यादि बड़ी लंबी एक प्रक्रिया है, क्योंकि एक मास के बाद या दो मास के बाद आपने यात्रा करनी है तो अनेकों व्यवस्थाएँ बनाकर तीर्थयात्री आता है। और इस वर्ष को ये अपवाद है क्योंकि वर्षा अत्यधिक हुई, लेकिन इससे पूर्व भी मैं पिछले 4 वर्षों से लगातार ये देख रहा था कि श्रावण पूर्णिमा से लगभग 1 सप्ताह या 10 दिन पहले ये यात्रा किन्हीं कारणों से ये रोक दी जाती थी। तो निश्चित रूप से मैं पिछले वर्ष भी कहा, फिर आपके माध्यम से ये बात दोहराना चाहूँगा कि चूंकि ये तीर्थ यात्रा है इसको उसी परिपेक्ष में देखा जाना चाहिए और उसके अनुरूप ही सारी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। अगर जो व्यक्ति या जो श्रद्धालु देश से या विदेश से आकर श्रावण पूर्णिमा के दिन दर्शन करना चाहता है, जैसा कि हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि इसका जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, जो धार्मिक महात्म्य है दर्शन करने का, वो श्रावण पूर्णिमा का दिन है, तो उनके लिए सारी व्यवस्थाएं उसी तरह से उसके अनुरूप की जानी चाहिए। और जैसे कि इस बार मैं कहूँगा कि ये एक्सेप्शनल केस था, तो 9 तारीख को ही, मतलब 9 तारीख से पहले ही, शायद 8 तारीख को ही बता दिया गया कि ये यात्रा मार्ग जो है जब तक गवर्नमेंट ना कहेगी या प्रशासन नहीं कहेगा आप घर से ना निकलें। और मुझे अभी बताया गया, कुछ यात्री मेरे पास आए तो उन्होंने बताया कि वंदे भारत ट्रेन के अंदर घोषणा की जाती है कि जो तीर्थ यात्रा अमरनाथ जी यात्रा के लिए जा रहे हैं वो उतर जाए, तीर्थ यात्रा बंद है। तो ऐसी प्रयास किए जाने चाहिए, क्यों इस वर्ष ये निश्चित है कि यात्री तीर्थ यात्री की सुरक्षा वो सर्वोपरि है, मतलब प्रशासन ये चाहेगा कि किसी भी यात्री को क्षति ना पहुंचे और वो सुरक्षित जाए और दर्शन करके सकुशल लौटे। लेकिन इसका सुखद पहलू इस बार की यात्रा का यह है कि जैसे मैंने कहा कि 3 जुलाई को यात्रा जो प्रारंभ हुई और शायद 13 या 14 तारीख को यह समाचार था कि 3 लाख यात्री, औसतन 30,000 यात्री प्रतिदिन जाके दर्शन किए, और आज की तारीख में जो मेरी जानकारी है 4,75,000 से कुछ अधिक यात्री इस बार ऊपर जाके पवित्र गुफा में उन्होंने दर्शन किए और सकुशल अपने घरों को लौट गए। और मुझे लगता है आने वाले समय में ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि जो भी श्रद्धालु देश से विदेश से आता है उसको ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाए कि वो श्रावण पूर्णिमा के दिन जाकर भी दर्शन कर पाए।
1: जी श्रोताओ, आप इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बने रहिए।

श्रोताओं, आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 समाप्त कर रहे हैं। FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और DTH की आराधना सर्विस न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। जैसा कि 18 अगस्त 2024 की धार्मिक अहमियत के हवाले से मैं आपको बता रही हूं, मैं आपको बताती चलूं कि 18 अगस्त श्रावण मास में है। श्रावण को सनातन परंपरा में भगवान शिव की भक्ति और साधना के लिए विशेष पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, इसीलिए इस दिन शिव जी का स्मरण, मंत्र जाप, पूजा, दान और सात्विक जीवन को महत्व दिया जा सकता है। मेरे नजरिए से 18 अगस्त की सबसे खूबसूरत बात यह है श्रोताओं कि काल की जयंती और श्रावण की भक्ति मिलकर एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देती हैं। अपने जीवन में धर्मा का मजबूत रखो, धर्मा को मजबूत रखो, अपने जीवन में सत्य का साथ दो, अन्याय से दूर रहो और अपने कर्मों को पवित्र बनाने का प्रयास करो। आप हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में बने रहें।

श्रोताओं, 22 अगस्त 2024 से छड़ी मुबारक की मुख्य पवित्र यात्रा शुरू होगी। महंत

दीपेंद्र गिरी की अगुवाई में पवित्र छड़ी मुबारक को अमरनाथ जी की गुफा की ओर ले जाया जाएगा। छड़ी मुबारक की यात्रा पारंपरिक पहल का मार्ग से फिर आगे बढ़ेगी और फिर छड़ी मुबारक 22 अगस्त और 23 अगस्त को पहलगाम में विश्राम करेगी। पहलगाम पहुंचने पर भक्तों के बीच भक्ति और शिव नाम का माहौल देखने को मिलेगा। उसके बाद 24 अगस्त को पवित्र छड़ी चंदनवारी पहुंचेगी। यहां से यात्रा और भी कठिन पहाड़ी क्षेत्रों की ओर बढ़ेगी। उसके बाद 25 अगस्त को छड़ी मुबारक शेषनाग पहुंचेगी। शेषनाग के आध्यात्मिक और प्राकृतिक वातावरण में भक्तों के लिए ये पड़ाव विशेष महत्व रखता है। उसके बाद 26 और 27 अगस्त को छड़ी मुबारक पंचतरणी में दो रात विश्राम करेगी। पंचतरणी से पवित्र अमरनाथ गुफा का अंतिम चरण शुरू होता है। उसके बाद भी आपको बताएंगे, आप इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बने रहिए।

0: श्रोताओं, आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 समाप्त कर रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz और DTH की आराधना सर्विस न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। श्रोताओं, ठीक 9:25 पर न्यूज का टाइम जो है वो आपको सुनाएंगे। फिलहाल आप
1: न्यूज सुनिए। कम खुद कम दर्जा हरारत 1.3 डिग्री यलजन जमे रोज सुन कम दर्जे हरारत 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करने अथ सत खबरन हूँ यह बुलेटिन अंत। खुदा हाफिज।
2: आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं आबिदा अख्तर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि गुप्त व शुनीद सिर्फ अल्फाज का तबादला नहीं बल्कि दिलों के दरमियान एक पुल और अमन व खुशहाली के लिए एतमाद को परवान चढ़ाती है। सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन की तरफ से पुलवामा में मनकदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 6000 साल कबल हमारे मुल्क ने एक साथ चलने, एक साथ तहफ्फुज करने और एक दूसरे के लिए दिलों में जगह बनाने का एक खूबसूरत पैगाम दिया था। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और कम्युनिटी मराकज में बैनुल मजाहिब मुजाकरात मुनक्कद कराने की जरूरत पर जोर दिया।
3: इस मुलाकात कार्यक्रम के जरिए हम एक ऐसे ख्याल, एक ऐसी सोच के साथ यहाँ खड़े हैं जो कहता है कि आपसी गुप्तगू केवल अल्फाज का आदान प्रदान नहीं है बल्कि यह दिलों के बीच ब्रिज बनाने का सबसे बड़ा माध्यम है, पुल बनाने का माध्यम है। किसी ने बहुत खूब कहा कि दीवारें छोटी होती थीं, लेकिन पर्दा

0: से पहले सिर्फ भरोसा होता था।
1: बड़ी ब्रह्मणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के एक वफद ने एसोसिएशन के सदर तरुण सिंगला की सरबराही में वजीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की। वफद के अरकान ने जम्मू कश्मीर में सनअती तरक्की से मुतल्लिक कई मामलात पर वजीर आला के साथ तबादला ख्याल किया। इस मौके पर नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी और वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी भी मौजूद थे। सेहत और तिबी तालीम के वजीर सकीना इतू ने कल श्रीनगर में जम्मू कश्मीर शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 46वीं मीटिंग में कॉरपोरेशन की कारगुजारी के अलावा इंतजामी और माली मामलात का जायजा लिया। उन्होंने इदारा जाती लाहे अमल को मजीद मुस्तहकम करने और कॉरपोरेशन की स्कीमों की मौसर अमल आवरी की हिदायत दी। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कश्मीर ने साल 2022 में दर्ज किए गए नार्को टेररिज्म के एक मामले में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए रिहाड़ी कॉलोनी जम्मू के रहने वाले मफरूर मुलजिम मनोज कुमार भट्ट उर्फ पिंटू वलद पीके भट्ट की गिरफ्तारी अमल में लाई है। इस गिरफ्तारी को पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मौजूद दहशत पसंद तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन की मुबैना पुश्त पनाही से चलने वाली नार्को टेरर साजिश की तहकीकात में एक अहम पेशरफ करार दिया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए मुलजिम मनोज कुमार भट्ट पर इल्जाम है कि उसने सूबे में मुनशियात की फरोख्त और तकसीमकारी के नेटवर्क को फैलाने में कलीदी रोल अदा किया है। एसआईए ने इस मामले के ताल्लुक से मजाज अदालत में कई दीगर मुलजमान के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल किए हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने श्रीनगर में मुनक़द होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू कश्मीर के कामयाब इनेकाद के लिए तैयारियां मुकम्मल करने और मुतलिका महकमों के माबेन करीबी तालमेल की जरूरत पर जोर दिया है। कमिश्नर मौसूफ ने एक मीटिंग के दौरान इस फिल्म फेस्टिवल के लिए अब तक की तैयारियों का जायजा लिया। नाजमी इतलात श्रिया सिंगल ने उन्हें इस बारे में तफसीली जानकारी दी। वाज रहे कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू कश्मीर श्रीनगर में 7 से 10 सितम्बर तक मुनक़द हो रहा है। कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के सिलसिले में कुलगाम में कल एक तकरीब मुनक़द हुई जिसकी सदारत जिला के तरक्याती कमिश्नर शहजाद आलम ने की। तकरीब के दौरान कौमी गीत के सिलसिले में हुबुल वतनी के मौजूदात पर हुए मुख्तलिफ मुकाबलों में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले नौजवानों को एजाजात से नवाजा गया। बांडीपोरा में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अहतमाम से अगले माह की 12 तारीख को तीसरी कौमी लोक अदालत मुनक़द होगी। इसका अहतमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स बांडीपोरा मुंसिफ कोर्ट कम्प्लेक्स गुरेज और सुंबल में सुबह 10:30 बजे होगा। इफ़हाम व तफहीम के जरिए अपने मामला हल कराने के ख्वाहिशमंद अफराद और वकला से कहा गया है कि वो 31 अगस्त तक DLSA बांडीपोरा तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी बांडीपोरा सुंबल या गुरेज से राबता कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर ने जिले में एग्रीस्टैक के तहत किसानों की रजिस्ट्रेशन अमल का जायजा लिया। उन्होंने इस सिलसिले में डाटा को अपडेट करने के अमल में सुरत लाने की हिदायत दी। वाज़ेह रहे कि एग्रीस्टैक के जरिए तस्दीक शुदा जरी डाटा और किसानों के डाटा को मरबूत करके जरी सरगर्मियों के लिए एक डिजिटल बुनियाद फराहम किया जा रहा है। दरी असना डिप्टी कमिश्नर मौसूफ ने एक अलहदा मीटिंग में सालाना हर मुख गंगबल यात्रा के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। बांडीपोरा में जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल काउंसिल के मुश्तरक एहतमाम से कंपोस्टिंग नुमाइश का इनेकाद हुआ जिसका मकसद होम कंपोस्टिंग को फरोग देना और कूड़ा करकट को साइंसी बुनियादों पर अलग अलग करने के अमल के बारे में जानकारी आम करना था। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए जिले की डिप्टी कमिश्नर इंदु कंवल ट्रिब ने कहा कि इंतजामिया जिले के मुख्तलिफ इलाकों से बरामद होने वाले कूड़ा करकट को मुनासिब तरीके पर ठिकाने लगाएगी। आखिर में दर्जे हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 21.3 डिग्री सेल्सियस जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 26.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
2: श्रोताओं, आप उर्दू में न्यूज सुन रहे थे। 9:30 हो रहे हैं। आइए अब गायत्री मंत्र सुनते हैं। और आप इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बने रहिए।

जी श्रोताओं, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ और एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, इस विशेष प्रसारण में आप हमारे साथ बने रहिए।

श्रोताओं, 25 अगस्त 2024 को छरी मुबारक शेषनाग पहुंचेगी। शेषनाग के आध्यात्मिक और प्राकृतिक वातावरण में भक्तों के लिए ये पड़ाव विशेष महत्व रखता है। 26 और 27 अगस्त को छड़ी मुबारक पंचतरणी में 2 रात विश्राम करेगी और पंचतरणी से पवित्र अमरनाथ गुफा का अंतिम चरण शुरू होता है। श्रोताओं, यहां से हर भक्त के मन में एक ही आस होती है, वो ये कि बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन। उसके बाद फिर आता है वो पवित्र दिन जिसका हर शिव भक्त बेसब्री से इंतजार करता है, यानी कि 28 अगस्त 2024 रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर छड़ी मुबारक श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में पहुंचेगी। गुफा में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी और बाबा बर्फानी के चरणों में श्रद्धा अर्पित की जाएगी। इसी के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का पवित्र समापन होगा। छड़ी मुबारक की ये पवित्र यात्रा हमें केवल भगवान शिवा के दर्शन के अवसर नहीं देती, बल्कि हमें श्रद्धा, संयम, सेवा और एकता का संदेश भी देती है। और छड़ी मुबारक की ये पवित्र यात्रा हमें केवल भगवान शिवा के दर्शन का अवसर नहीं देती, बल्कि हमें श्रद्धा, संयम, सेवा और एकता का संदेश भी देती है। आप इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बने रहिए।

श्रोताओं, छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की पवित्र छड़ी हैं, जिसे भगवान शिव की पवित्र निशानी के तौर पर परंपरागत तौर पर अमरनाथ की गुफा तक ले जाया जाता है। इसकी यात्रा का निगरान और परंपरागत कस्टोडियन महंत दीपेंद्र गिरी जी हैं। छड़ी मुबारक की यात्रा अमरनाथ यात्रा की सबसे पुरानी और अहम धार्मिक परंपराओं में से एक मानी जाती हैं। अब सवाल यह है कि क्या आम यात्री छड़ी मुबारक के साथ जा सकते हैं या नहीं? इसका जवाब है हाँ, लेकिन वैलिड रजिस्ट्रेशन और यात्रा परमिट जरूरी है। महंत दीपेंद्र गिरी जी की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो साधु या श्रद्धालु छड़ी मुबारक के साथ चलना चाहते हैं, उनके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन परमिट होना चाहिए। आप हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में बने रहिए।

जी श्रोताओ, विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं। FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ और FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़। DTH की आराधना सर्विस न्यूज ऑन AIR और मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। श्रोताओ, अक्सर ये सवाल भी उठता है छड़ी मुबारक के दौरान कि क्या आम यात्री छड़ी मुबारक के साथ जा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा, बिल्कुल हाँ जा सकते हैं, लेकिन वैलिड रजिस्ट्रेशन और यात्रा परमिट ज़रूरी है। महंत दीपेंद्र गिरी जी की तरफ से भी ये कहा गया है कि साधु या श्रद्धालु छड़ी मुबारक के साथ चलना चाहते हैं, उनके पास जो है वो वैलिड रजिस्ट्रेशन परमिट होना चाहिए। इसलिए अगर आपका मकसद 28 अगस्त को छड़ी मुबारक के साथ या उसके करीब अमरनाथ गुफा में दर्शन करना है, तो सिर्फ आम यात्रा रजिस्ट्रेशन होना ही काफ़ी समझना ठीक नहीं होगा, बल्कि ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस, रूट एक्सेस और उस दिन के सिक्योरिटी एक्सेस अरेंजमेंट्स को ज़रूर फॉलो करना होगा। छड़ी मुबारक का पवित्र गुफा तक

पहुंचना सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि अमरनाथ यात्रा की पारंपरिक संपत्ति जो है वो उसका संपत्ति का धार्मिक चरण है। श्रवण पूर्णिमा के दिन पवित्र गुफा में पूजा मंत्र उच्चारण और अन्य पारंपरिक रस्में होती हैं। पिछले साल भी छड़ी मुबारक के गुफा पहुंचने पर विशेष पूजा और आरती हुई थी।

जी श्रोताओं, विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 आप समाप्त कर रहे हैं। एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्स, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्स और डीटीएच की आराधना सर्विस, न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। आप इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बने रहिए।

जी श्रोताओं, विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 आप समाप्त कर रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz और DTH की न्यूज ऑन DTH की आराधना सर्विस, न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। श्रोताओं, आपको बताएंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सोमवार को पवित्र श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। एक्सपर एक पोस्ट के जरिए LG ने इस तीर्थ यात्रा को श्रद्धालुओं के लिए एक बदलाव लाने वाला अनुभव बताया और सभी यात्रियों के लिए सुखद, सुरक्षित और आध्यात्मिक रूप से संतोषजनक यात्रा की प्रार्थना की। और उन्होंने लिखा, आज

पवित्र श्री बुद्धा अमरनाथ जी यात्रा को फ्लैग ऑफ करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यह दिव्य तीर्थ यात्रा श्रद्धालुओं के लिए एक बदलाव लाने वाला अनुभव है। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर कोने से आने वाले सभी यात्रियों की यात्रा सुखद, सुरक्षित और आध्यात्मिक रूप से संतोषजनक हो। महादेव आपकी पवित्र यात्रा का हर कदम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों श्रद्धालुओं के इस वर्ष की श्री बुद्धा अमरनाथ जी यात्रा में शामिल होने की उम्मीद है। आप इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बने रहिए।

श्रोताओं, छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की पवित्र छड़ी है, जैसे भगवान शिव की पवित्र निशानी के तौर पर परंपरागत तौर पर अमरनाथ जी की गुफा तक ले जाया जाता है। इसकी यात्रा का जो निगरान है और परंपरागत कस्टोडियन महंत दीपेंद्र गिरी जी हैं, और छड़ी मुबारक की यात्रा अमरनाथ यात्रा की सबसे पुरानी और अहम धार्मिक परंपराओं में से एक मानी जाती है। आपको बताएंगे कि 28 अगस्त 2026 को छड़ी मुबारक के हवाले से ख़ास अहमियत है, क्योंकि इसी दिन श्रावण पूर्णिमा के मौके पर छड़ी मुबारक श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक पहुंचकर अंतिम पारंपरिक पूजन और दर्शन की रस्म अदा करेगी। 2026 की अमरनाथ यात्रा भी 3 जुलाई से 28 अगस्त तक रखी गई है, और 28 अगस्त श्रावण पूर्णिमा के दिन छड़ी मुबारक पवित्र अमरनाथ गुफा में पहुंचकर विशेष पूजन और दर्शन करेगी। इसी को पारंपरिक तौर पर यात्रा के समापन का सबसे अहम धार्मिक दिन माना जाता है। आप इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बनी रहिए।

श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, ठीक 12 बजे आप समाचार सुनेंगे।

0: दिन के 12 बजने को हैं, कुछ ही क्षणों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। बारहवा ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडप में चल रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और विशेषज्ञ पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आम सहमति बनाना और पर्यावरण के क्षेत्र को मजबूत करना है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना उत्कृष्ट निर्णय है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिवशंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर

जी श्रोताओं, 12:30 हुए हैं। आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 समाप्त कर रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz और DTH की आराधना सर्विस न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती की वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। श्रोताओं, अब से लेकर शाम के 6 बजे तक आपकी रेडियो दोस्त पजमान आपके साथ रहेगी और आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इसी के साथ अपनी रेडियो उद्घोषक सबरीना महराज को इजाज़त दीजिए। आपकी यात्रा सफल रहे। शुभ यात्रा। जय हिंद।

विशेष प्रसारण श्रेया मनाज यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। न्यूज ऑन एयर के आराधना चैनल डीटीएच और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर हम उपलब्ध है। मैं आपकी उद्घोषिका पजमान फेरोज अभी से लेकर शाम 6 बजे तक आपके सेवा में उपस्थित रहूंगी।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर। श्रोताओं आए आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे जहां से आप समाचार समाप्त करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। बारहवां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडप में चल रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और विशेषज्ञ पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं।

12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडप में चल रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और विशेषज्ञ पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आम सहमति बनाना और पर्यावरण के क्षेत्र को मजबूत करना है। श्री यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे सहयोग को और मजबूत करने

0: मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाश अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिव शंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिव शंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाश अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में ग्वालियर भिंड इटावा राजमार्ग पर कल देर रात वैन और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 23 घायल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर कारणों की जांच शुरू कर दी है। भारत और श्रीलंका के बीच गॉल्फ में खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 5 विकेट पर 123 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को पहली पारी में 284 रन पर ऑल आउट कर दिया। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महिला सिंगल्स के पहले दौर में भारत की उन्नति हुडा और म्यांमार की थेत हतार थुजार के बीच मुकाबला जारी है। भारतीय खिलाड़ी ने कुछ देर पहले ही पहला गेम 22-20 से जीत लिया है। लक्ष्य सेन आज शाम पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। मिक्स डबल्स के पहले दौर में भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे को कनाडा की जोड़ी जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई से हार का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The 12th BRICS Environment Ministers meeting is underway at Bharat Mandapam in New Delhi. The meeting serves as a platform for ministers, senior officers, policymakers and experts from the member countries to engage in substantive discussions, foster consensus and strengthen environmental cooperation. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav, is presiding over the meeting. In a social media post, Mr. Yadav said he is looking forward to further strengthening cooperation and engaging in a meaningful manner for positive outcomes for the Environment Working Group. The theme of India's BRICS Chairship 2026 is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The Jharkhand government has cancelled the JSSC-CGL examination after 24-day students' protest in the state. It has also cancelled all other recruitment exams conducted by private agency TDPL. However, the demand of protesters for a CBI probe remains unresolved. The Jharkhand government announced a probe into recruitment examinations conducted by JPSC and JSSC since 2014. Meanwhile, Minister Deepika Pandey Singh and Health Minister Irfan Ansari, along with MLA Jairam Kumar, visited Sadar Hospital and ended the hunger strike of Devendranath Mahato and other protesting students. The Enforcement Directorate, ED, has conducted searches at several locations in Karnataka. Links to alleged Karnataka Public Service Commission, KPSC, paper leak scam. Former chairman of KPSC Shiv Shankarappa S. Sahukar is accused of examination paper leaks, tampering with OMR sheets and demanding bribes ranging from 70 to 80 lakhs per candidate to recruit government veterinary officers. It is also alleged that a private company acted as a middleman. In this background, ED conducted searches at the residence of Shiv Shankarappa and a few former members of KPSC and officers linked to a private company. The investigation is related to irregularities and possible involvement of people connected with the corrupt recruitment process. In Madhya Pradesh, 8 persons were killed and 23 others injured after a pickup van collided head-on with a truck on the Gwalior-Bhind-Itawa Highway 719 in Bhind district late last night. According to reports, the labourers were travelling from Guhad in Bhind to their homes in Lakhimpur.

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सावन के दिनों को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इन दिनों पूजा करने से गहरी आध्यात्मिक शक्ति और शांति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में समुद्र मंथन के दौरान ब्रह्मांड को बचाने के लिए शिव जी ने विष पी लिया था, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और नीलकांड भी कहलाए। माना जाता है जल चढ़ाने से उन्हें शीतलता मिलती है। माँ पार्वती की भक्ति ये कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए पूरे श्रावण मास में व्रत रखा था, जो अविवाहित महिलाओं को अच्छे जीवन साथी के लिए व्रत रखने की प्रेरणा देती है। जुड़े रहे आप हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में और सुनते रहे विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ यात्रा 2026।

विशेष प्रसारण श्रेया मनाजी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आए आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे, जहां से आप समाचार समाप्त करेंगे उर्दू, अंग्रेज़ी और हिंदी में।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। भारत की सदारत में ब्रिक्स मुल्कों के माहौलियात के वजीरों की 12वीं मीटिंग नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीक घपले के मामले में तलाशी की कार्रवाई की है। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पार्टियों पर वोट बैंक सियासत की खातिर FCRA बिल पर गलत बातें फैलाने का इल्जाम लगाया है। झारखंड के कई हिस्सों में कल रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसमियात महकमे ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में भी बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। और हुकूमत ने कौमी खेल अवार्ड का ऐलान कर दिया है। बैडमिंटन की खातून खिलाड़ी त्रिशा जोली और पुलेला गायत्री गोपीचंद समेत 15 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिए जाएंगे। अब खबरें तफसील से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स मुल्कों के माहौलियात के वजीरों का 12वां इजलास जारी है। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली की वजारत ने कहा कि ये इजलास अहम उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल, इत्तफाक राय को फरोग देने और माहौलियात से मुतालिक बाहमी तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। ब्रिक्स उजराए माहौलियात के इजलास के सदारत माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव कर रहे हैं। यह इजलास भारत की 2026 की ब्रिक्स सदारत के वसीत और मौजू इस्तेहकाम, इख्तरा, तआवुन और पायदारी की तश्कील के तहत मुनाकिद किया जा रहा है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर जनाब यादव ने कहा कि वो माहौलियात के वर्किंग ग्रुप के लिए मुस्बत नतीजों की खातिर एक मानखेज बातचीत और तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने के लिए पुरुम्मीद हैं। 5वीं सेमिकॉन इंडिया 2026 कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में अगले महीने की 17 तारीख से होगी। इस 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में 40 से ज्यादा मुल्कों के 500 से ज्यादा नुमाइशकार और तकरीबन 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। इस साल की सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस का मौजू होगा सिलिकॉन से निजाम तक इकोसिस्टम की तामीर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी सरकर्दा मुल्कों के आलमी CEOs के साथ गोलमेज कॉन्फ्रेंस की सदारत भी करेंगे। इन मुल्कों में अमेरिका, जापान, जनूबी कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, नेदरलैंड्स और मलेशिया शामिल हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन KPSC के मुबैना पेपर लीक घपले के मामले में कई मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की है। KPSC के सबक चेयरमैन शिवशंकर अप्पा S. साहूकार को इम्तहान का पर्चा

0: लीक होने के मामले में मुल्जिम बताया गया है। उन पर ओएमआर शीट्स में हेराफेरी करने और सरकारी वेटनरी अफसरों की भर्ती के लिए एक एक उम्मीदवार से 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का इल्जाम है। ये इल्जाम भी लगाया गया है कि एक प्राइवेट कंपनी ने बिचौलिए का काम किया था। इस तनाजुर में ईडी ने शिवशंकर अप्पा और केपीएससी के कुछ साबिक अरकान की रिहाइश गाहों और प्राइवेट कंपनी से वाबस्ता दफातर में तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पार्टियों पर इल्जाम लगाया है कि वो वोट बैंक से या सियासत की खातिर गैर मुल्की एहतियात को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल के ताल्लुक से गलत जानकारी फैलाने में लगी हुई हैं। एक प्राइवेट न्यूज एजेंसी के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मजकूरा बिल से गैर मुल्की एहतियात की आमद में शफाफियत लाई जा सकेगी और सच्चाई सामने आ जाएगी। जनाब रिजिजू ने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन झूठ फैला रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की झूठी बातें फैलाकर सियासत करना बिल्कुल नामुनासिब बात है।
1: पूरा झूठ फैला है देश भर में कि एफसीआर ने जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिये, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: बीजेपी ने नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर्स में यौम आज़ादी की तकरीबात के दौरान कौमी गीत वंदे मातरम की तोहिन किए जाने पर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया है। बीजेपी के तर्जुमान रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जब कांग्रेस पार्टी कौमी गीत का एहतराम भी नहीं

0: हिंदू का है, तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
1: बीजेपी ने नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर्स में यौम आज़ादी की तकरीबात के दौरान कौमी गीत वंदे मातरम की तोहिन किए जाने पर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया है। बीजेपी के तर्जुमान रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जब कांग्रेस पार्टी कौमी गीत का एहतराम भी नहीं कर सकती तो उसे तहरीक आज़ादी पर अपनी इजारादारी का दावा करने का सिलसिला तर्क कर देना चाहिए। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जेपी नड्डा की कल नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में एंजियोप्लास्टी की गई और उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। एक बयान में एम्स ने कहा है कि अमराज कल्ब के महकमे में जनाब नड्डा की निगहदाश्त की जा रही है। उन्हें बेचैनी की शिकायत के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में दाखिल कराया गया था। वजारत दिफा ने स्ट्रेटजिक तौर पर अहम 405 अशिया पर मुश्तमिल पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट PIL को नोटिफाई कर दिया है। इन अशिया की तखमीना तजारती कदर 3,070 करोड़ रुपए है। इनमें 16 अशिया भारतीय कोस्ट गार्ड और 389 अशिया सरकारी दिफाई शोबे की कंपनियों की हैं। इस फहरिस्त में लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स, सब सिस्टम, सब असम्बलीज, कलपुर्जे और कच्चा माल शामिल हैं। वजारत ने बताया है कि ये छठी PIL आत्मनिर्भर भारत इकदाम के तहत दिफाई साजो सामान तैयार करने में खुद मुख्तारी को फ़रोग देने की सरकार की कोशिशों की जानिब एक और कदम है। केरलम में विजयनगरम सी पोर्ट से रास दरामदात और बरामदात आज से शुरू हो गई। यह कदम खित्ते की समुद्री तिजारत के लिए एक अहम संग मील साबित होगा। केरलम के वजीर आला VD साथीसन ने इन खिदमात का इफ्तिताह किया। उन्होंने यूरोप के लिए 2 कंटेनरों को रवाना किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। खलीज बंगाल के ऊपर हवा के गहरे दबाव का हल्का बनने से झारखंड और पड़ोस की रियासतों में मौसम में तब्दीली आई है। रांची, जमशेदपुर, पलामू और रियासत के कई दीगर हिस्सों में कल रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। कुदरती आफात से पैदा हालात से निपटने से मुतालिक महकमे ने लोगों को सलाह दी है कि वो महफूज मकामात पर रहें, क्योंकि 40 से लेकर 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा के तेज़ झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: खलीज बंगाल के ऊपर हवा के गहरे दबाव का हल्का झारखंड के करीब पहुंच गया है और अब ये रांची के कोई 100 किलोमीटर शुमाल मशरक में मरकूज है। इसके ज़ेर असर रियासत के शुमाल वस्ती और शुमाल मगरबी हिस्सों में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसमियात महकमे ने चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू और गढ़वा जिले में इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश होने से निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। मौसमियात के माहिरीन के मुताबिक हवा के दबाव का ये हल्का अगले 24 घंटे के दौरान बिहार के रुख करते हुए मगरब शुमाल मगरब में बढ़ने का इम्कान है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
1: भारतीय मौसमियात महकमे ने झारखंड, बिहार,

0: रेड अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश होने से निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। मौसमियात के माहिरीन के मुताबिक हवा के दबाव का ये हलका अगले 24 घंटे के दौरान बिहार के रुख करते हुए मगरिब शुमाल मगरिब में बढ़ने का इम्कान है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
1: भारतीय मौसमियात महकमे ने झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़,

नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का

0: मान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। ट्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुडा म्यांमार की थेत हतार थुजार को हराकर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने सार्थक चर्चा, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए सतत पर्यावरण के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2005 और 2022 के बीच प्रदूषण उत्सर्जन की तीव्रता में 37% से अधिक की कमी की है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक स्वतंत्र, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण तथा योगदान को बेहद महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना एक उत्कृष्ट निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकती तो उसे स्वतंत्रता आंदोलन के संरक्षक होने का दावा करना बंद कर देना चाहिए।
2: 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना, तो ये जो नया बदलाव किया गया, कभी ये उम्मीद नहीं थी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट जो बना 1971 में, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। उसमें क्या कहा गया, तिरंगा हो, जनगणमन हो, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाएगी।
0: श्री प्रसाद ने कहा कि कल जब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गोवा गए थे तब भी पार्टी के कार्यक्रम में वंदे मातरम के केवल 2 ही छंद गाए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि डेरगांव दीमापुर पाइपलाइन के चालू होने से नागालैंड अब पूर्वोत्तर गैस ग्रिड और राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ गया है। श्री पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पूर्वोत्तर को भारत का विकास इंजन बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इस क्षेत्र को एकीकृत गैस आधारित अर्थव्यवस्था के करीब लाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्न पत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिव

शंकरप्पा ए साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिव शंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमित

रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिव शंकरप्पा, एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिव शंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमित

0: तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। केरलम में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधे निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है। ये इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विझिंजम से यूरोप के लिए रवाना होने वाले पहले जहाज के 2 कंटेनर को रवाना किया।
1: पिछले साल 2 मई को बंदरगाह को देश को समर्पित किए जाने के बाद अब सीधे आयात निर्यात का काम शुरू हो गया है। इन सेवाओं के शुरू होने से यूरोप जाने वाले शिपमेंट के समय में काफी कमी आएगी। पहले विझिंजम से यूरोप पहुंचने में शिपमेंट को लगभग 2 महीने लगते थे, लेकिन अब इसके सिर्फ 28 दिनों में पहुँचने की उम्मीद है। बंदरगाह अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ये सुविधा सिर्फ फुल कंटेनर लोड को ही संभालेगी। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा है कि युद्ध की बदलती प्रकृति ने सशस्त्र बलों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने और एकीकृत करने को अनिवार्य बना दिया है। नई दिल्ली में आज उन्होंने निगरानी और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स पर भारतीय सैन्य समीक्षा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विशेषकर 2020 के बाद से युद्ध में तीव्र और व्यापक परिवर्तन आया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने क्षेत्र में पाकिस्तानी बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। पार्टी ने नागरिकों की मौत और घायल होने, मनमानी गिरफ्तारियों, जबरन गुमशुदगी और संचार व्यवस्था बंद किए जाने की खबरों पर गंभीर चिंता जताई। संगठन ने शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों की आवाजाही पर प्रतिबंध और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर भी चिंता व्यक्त की है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों के लिए 3 महीने का मुफ्त रिचार्ज घोषित किया है। पत्र सूचना कार्यालय की

0: हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कारणों की जांच शुरू कर दी है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण झारखंड और आसपास के राज्यों में मौसम पूरी तरह बदल गया है। राजधानी रांची, जमशेदपुर और पलामू समेत राज्य के बड़े हिस्से में रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: बंगाल की खाड़ी से उठा गहरा दबाव आज सुबह रांची से महज 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में केंद्रित हो गया है। इसके प्रभाव से झारखंड के उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू और गढ़वा जिलों के लिए भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में ये डिप्रेशन पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बिहार की ओर आगे बढ़ेगा, जिसका असर आगामी दो दिनों तक झारखंड में रहने की उम्मीद है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: इस बीच मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिन में उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर भारत में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, केरल और माही में आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। प्रमुख महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी ट्रीसा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसाइयाह अरुमनैया गम को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया जाएगा। एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंदकुमार चव्हाण को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पुणे स्थित आर्मी पैरालंपिक नोड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में म्यांमार की थेत हतार थुजार को सीधे सेटों में हराकर भारत की उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अगले दौर में उनका मुकाबला कनाडा की 13वीं वरीयता प्राप्त मिशेल ली से होगा। इस बीच मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारतीय जोड़ी आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तथा तुर्की की जोड़ी एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्तास के बीच मैच जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया है। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 354 अंक गिरकर 77,374 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की गिरावट के साथ 24,206 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। ट्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz पर और FM पहलगाम 100.1 MHz पर। न्यूज़ ऑन एयर की आराधना चैनल DTH और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं।

दशमलव 7 मेगाहर्ट्स पर, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्स पर। श्रोता आपके साथ छड़ी मुबारक का कार्यक्रम साझा करना चाहेंगे। 12 अगस्त छड़ी मुबारक को दाश नामी अखाड़ा श्रीनगर से पुराने और प्रसिद्ध शंकराचार्य मंदिर लिया गया, जहां दर्शन हुए। 13 अगस्त छड़ी मुबारक को शारिका भवानी मंदिर ले जाया गया, जहां विशेष पूजा हुई। 15 अगस्त दाशनामी अखाड़ा श्रीनगर के अंदर

विशेष प्रसारण श्रेया मनाजी यात्रा 2026। आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। जुड़े रहे आप हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में और सुनते रहे।

विशेष प्रसारण श्यामन आज यात्रा 2026। आप समाप्त कर रहे FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर। श्रोताओं, कुछ ही समय पहले आपके साथ छड़ी मुबारक का कार्यक्रम साझा किया। अब आगे ये बताना चाहेंगे कि अब 22 अगस्त छड़ी मुबारक की मुख्य यात्रा शुरू होगी। 22 और 23 अगस्त को पहलगाम में रात का विश्राम होगा। 24 अगस्त रात का विश्राम चंदनवाड़ी में होगा। 25 अगस्त रात का विश्राम शेषनाग में होगा। 26 और 27 अगस्त रात का विश्राम पंचतरणी में होगा। 28 अगस्त श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक अमरनाथ की पवित्र गुफा पहुंचेगी। यहां अंतिम पूजन और दर्शन होंगे, जो 2026 की अमरनाथ यात्रा के औपचारिक समापन को दर्शाता है। जुड़े रहे आप हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में श्री अमरनाथ यात्रा 2026।

विशेष प्रसारण श्रावण आज यात्रा 2026 आप समाप्त कर FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर। श्रोताओं, एक अच्छी यात्रा वही है जो सिर्फ सुहानी ही नहीं बल्कि सुरक्षित और व्यवस्थित भी हो। अक्सर हम जल्दबाजी में कुछ बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो बाद में परेशानी का कारण बनती है। इसलिए चाहे आप लंबी दूर की यात्रा कर रहे हो या अभी जो छड़ी मुबारक की यात्रा हो रही है या किसी नए रास्ते पे जा रहे हो, कुछ बातों का नियमित रूप से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जुड़े रहे आप हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में, विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ यात्रा 2026।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आपके साथ एक बार फिर छड़ी मुबारक का कार्यक्रम साझा करना चाहेंगे। 12 अगस्त छड़ी मुबारक को दाशनामी अखाड़ा श्रीनगर से पुराने और प्रसिद्ध शंकराचार्य मंदिर ले जाया गया, जहाँ दर्शन हुए। 13 अगस्त छठी मुबारक को शारिका भवानी मंदिर ले जाया गया, जहां विशेष पूजा हुई। 15 अगस्त दाशनामी अखाड़ा श्रीनगर के अंतर स्थिति श्री अमरेश्वर मंदिर में छड़ी स्थापना की धार्मिक रस्में की गई। 17 अगस्त नाग पंचमी के शुभ मौके पर दाशनामी अखाड़ा में पारंपरिक छठी मुबारक पूजन हुआ। पूजा के बाद छठी मुबारक भक्तों के दर्शन के लिए उपलब्ध रही। 22 अगस्त छठी मुबारक के मुख्य यात्रा शुरू होगी। 22 और 23 अगस्त को पहलगाम में ही रात का विश्राम होगा। 24 अगस्त रात का विश्राम चंदनवाड़ी में होगा। 25 अगस्त रात का विश्राम शेषनाग में होगा। 26 और 27 अगस्त रात का विश्राम पंचतरणी में होगा। 28 अगस्त श्रवण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन छठी मुबारक अमरनाथ की पवित्र गुफा पहुँचेगी। यहाँ अंतिम पूजन और दर्शन होंगे, जो 2026 की अमरनाथ यात्रा के औपचारिक समापन को दर्शाता है। जुड़े रहे आप हमारे साथ इस विशेष प्रसारण

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ यात्रा 2026 आप समाप्त कर FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर श्रोताओं आए आरती का आनंद लेते हैं।

सभी भक्तजन भोले बाबा के चरणों में बैठकर भोले बाबा की पवित्र आरती का दर्शन कर रहे हैं, आरती श्रवण कर रहे हैं। आप सभी भक्तजन बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ, प्रीति के साथ, आनंद मन से भोले बाबा के भजन का ध्यान करेंगे।

0: बोलिए शंकर भगवान के
1: जय,
0: धर्म के
1: जय,
0: अधर्म का
1: नाश हो,
0: प्राणियों में
1: सद्भाव हो,
0: विश्व का
1: कल्याण हो,
0: गौ माता की
1: जय,
0: मात पिता की
1: जय,
0: गुरु जनों की
1: जय,
0: सभी संतों की
1: जय,
0: सभी भक्तों की
1: जय,
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय,
0: आज के आनंद की
1: जय,
0: भारत माता की
1: जय,
0: शंकर भगवान की
1: जय,
0: शंकर भगवान के परिवार की
1: जय,
0: शंकर भगवान के गणों की
1: जय,
0: शंकर भगवान के भक्तों की
1: जय,
0: अमरनाथ स्वामी की
1: जय,
0: बाबा बर्फानी की
1: जय,
0: नमः पार्वती पते हर हर।

0: Sergio.
1: श्रोताओं, बादल में रिकॉर्ड की गई आरती समाप्त कर रहे थे। इसी के साथ हमारी आज की सभा समाप्त होती है। आपको बता दें कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बालतल में हमारे साथी इंजीनियर्स थे नसीर अहमद, एजाज अहमद गुरको और शौकत अहमद। मैं आपकी साथी उद्घोष का पजमान फेरोज़, इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारुकवानी और श्री गुलाम रसूल आखून। यात्रा का विशेष प्रसारण लिए हम आपकी सेवा में कल 6:53 फिर उपस्थित होंगे। जब तक के लिए शुभ यात्रा, शुभ रात्रि, जय हिंद।

अब प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। उधर अयोध्या से बारात प्रस्थान के पश्चात महिलाएं स्वांग रचाकर विभिन्न भेष धारण कर नक्टा प्रस्तुत करती हैं।

जनकपुर से चारों बेटे बहुओं की बारात लौटने के पश्चात परिछन करने के लिए तीनों रानियां पारंपरिक रीति से गीत गाकर हंसी खुशी परिछन करती हैं।

इधर मंथरा को खुशी रास न आई और कैकेयी के कान में फुसफुसा कर भवन में षड्यंत्र रचती हैं और कैकेयी राजा दशरथ जी से लिए हुए तीन वचन मांग लेती हैं, जिस कारण अयोध्या में गाज गिर जाती है और राजा दशरथ विलाप करते हुए कुछ इस प्रकार कह उठते हैं।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

नवरात्र नवदुर्गानी उपासनानो आचे त्रीजो दिवस। आ दिवसना दुर्गा देवी चंद्रघंटा एम कहवाय। ए चंद्रघंटा जी नु आपणे आ रीति ध्यान करीशू।

हे महादेवी, अपनी घंटा जगतमा एना नादथी व्याप्त थईने दैत्योना तेजने नष्ट करे। हे महादेवी, जेम पोताना पुत्रोनी माता रक्षा करे, एम ए घंटा अमोने पापमाथी बचाओ, रक्षा करो। चंद्र घंटा शब्दनो अर्थ चंद्रः घंटायाम यस्यात् स एम थाई, इतले के जेमनी घंटामा आह्लादकारक चंद्र से ए देवी चंद्र घंटा। ये तो जाणीतुं छे કે ઘંટનો ધ્વનિ દેવ દેવીઓને પ્રસન્ન કરતો હોય છે, આસુરી ભાવોને બગાડી દે છે। બૌદ્ધ જૈન ઈસાઈ ધર્મસ્થાનોમાં ઘંટનો ધ્વનિ સુમંગલ મનાય છે એ જાણીતું છે। આ ચંદ્રઘંટા દેવી એ સિંહના વાહનવાળા છે, દશભુજા છે, अनेक प्रचंड शस्त्रों थी युक्त छे। एमनी घंटा दुर्भावनाओनो नाश करे छे। नाद ब्रह्मनी जाने के तेनाथी अनुभूति थई छे। चालो चालो आ नाद अने दिव्य शब्द आयो त्यारे श्रुतिना मंत्रों ने पण आपणे बोलीए सांभळीए। आ संदर्भमां देवी अथर्वशीर्षनो आ मंत्र जोईए।

अर्थ प्राण रूप देवोए जे प्रकाशमान वैखरी वाणी ने उत्पन्न करी अने अनेक प्रकार थी हा लोको बोले छे। ए कामधेनु तुल्य आनंददायक अन्न तथा बल अपनारा वाक्रूपिणी वाग्रूपिणी भगवती उत्तम स्तुतिओथी संतुष्ट थयेला अमारी पासे पधारो। ओम चंद्रघंटायै नमः। अने आ साथे विश्व राष्ट्र अने समष्टिना कल्याण मंगल माटे आपणे दुर्गाजीनी वंदना करीए छीए।

नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे। हे मां दुर्गे, प्रचंड अने अदम्य लीलाओथी बधा शत्रु दानवोने जड़ मूल थी आप उखेड़ी नाखनारा छो, दुखों माथी तारनारा। हे दुर्गे, तमोज अमारी एक गति आधार छो, अपने प्रणाम, अपने मां हमारा वंदन। दुम दुर्गायै नमः। अथ विश्वंभरी स्तुति। विश्वंभरी विश्वेश्वरित्वं परिपास।

सज्जन दे गल लगियां लगियां पैगी राती अंधेरी सज्जन दे गल लगियां लगियां पैगी राती अंधेरी ओ जान भी दे हुण सोहणिया।

युग पुरुष संत शिरोमणि कबीर दास जी ने कहा है, हम एक से ही अनेक हुए हैं और फिर एक ही हो जाएंगे। और जब हम सभी उस एक परमात्मा को जान लेंगे, तब हम सब भी उस एक में ही मिल जाएंगे।

और इस संसार सागर से तारने वाले सिर्फ एक है, सद्गुरु साहिब। जो ये सत्य जान जाते हैं वे भव सागर से तर जाते हैं।

जासुक मुनि वर लटे सुर नर करें विलाप सो सुख सहजे पाइए सदगुरु संग दिया। एक जीव है एक नाम है एक है साहिब प्यारा।

साहिब तेरी साहिबी घट घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। एक माता एक पिता

मन मक्का दिल द्वारी का काया काशी जान दस द्वारे का तेहरा तामे ज्योति पिछान ईश्वर अंश जीव अविनाशी इसी में काबा इसी में काशी।

कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त है बिरला जानी कोई, साधक साधे साध न पावे बीते जीवन सारा।

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दे। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।